0: अक्सर अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, अक्सर अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें रुक कर कुछ देर पढ़ना और समझना पड़ता है।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

किसी एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले का नाम ही जिंदगी है।

हमेशा खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। इसका मतलब ये है कि अब आपने अपने सारे दुखों से ऊपर उठकर जीवन जीना सीख लिया है। सुबह की इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी मेरे यानी अर्चित के साथ।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को भारत के स्वाधीनता संग्राम के हिस्से के रूप में स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ किया गया था।
1: 7 अगस्त 1905 को देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
0: श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों और अपने हाथों से कपड़े बनाने वाले कारीगरों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया।
1: हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार, जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं, और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना।
0: 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप

में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करना होगा। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में 2 प्रकाशन अर्थ रूट और मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बेहारा चरियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4-लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी। देश ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना के प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर और भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम कल से प्रभावी हो गया है। इस कदम का स्वागत करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने इसे एक वायदे का पूरा होने जैसा बताया। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। राजधानी रांची में 6 प्रदर्शनकारियों की भूख हड़ताल जारी है। छात्र नेताओं का दावा है कि उन्हें कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से बातचीत का कोई नियंत्रण नहीं मिला है। विरोध प्रदर्शन का असर कल झारखंड विधानसभा में भी देखा गया, जहां विपक्षी विधायकों ने मानसून सत्र के पहले दिन ही नारेबाजी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार आंदोलनकारियों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा, जबकि अश्मिता चालिहा का सामना जापान की हिना केची से होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Tanvi Gupta. Prime Minister Narendra Modi has urged every citizen to celebrate National Handloom Day today with enthusiasm and joy. Sharing a video message, Mr. Modi said that on August 7, 1905, the Swadeshi movement was launched as part of India's struggle for independence, and people from all walks of life united and fought a historic battle against British rule. He encouraged people to support poor weaving families and artisans who create fabrics with their own hands.
1: अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, जन जन जुड़ गए। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है बुनकर परिवार, जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं और नई नई वेराइटीज होती है। आप देखिए ना क्या कुछ नहीं है। और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध कर। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें।
0: National Handloom Day is observed every year on the 7th of August to commemorate the Swadeshi movement launched on the same day in 1905. Ministry of Textiles will organize a national function at the Rashtrapati Bhavan Cultural Center today to celebrate 12th National Handloom Day. President

Welcome back, listeners. You're listening to Akashvani FM Rainbow 101.9, and this is me, your RJ Lahiri. And it's 10:36 in studio clock. We were talking about National Handloom Day. Dosto, did you know that a single handloom sari can take anywhere from 10 days to even 6 months to complete, depending on the design? Crazy, right? और हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर 2 दिन लेट हो जाए तो कस्टमर केयर को कॉल कर देते हैं, मेरे पार्सल कहाँ है भाई, अभी तक नहीं मिला। हियर्स अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट, एवरी हैंडलूम पीस इज स्लाइटली डिफरेंट। दैट मीन्स जो आउटफिट आप पहन रहे हैं उसका एग्जैक्ट कॉपी शायद दुनिया में कहीं भी ना हो। नाउ दैट्स वॉट आई कॉल एक्सक्लूसिव फैशन। No limited edition, actually unlimited uniqueness. Isn't it very beautiful? Because India is truly a paradise when it comes to handloom. Every state has its own identity. Banarasi, Kanchipuram, Pochampalli, Chanderi, Paitani, Maheshwari, and the list just goes on and on. Aur sabse interesting baat ye hai ki हर वीव के पीछे एक कहानी होती है। सम आर इंस्पायर्ड बाई टेम्पल्स, सम बाई रिवर्स एंड सम बाई नेचर, एंड सम डिज़ाइंस हैव बीन कैरीड फॉरवर्ड बाई फैमिलीज फॉर जनरेशन्स। इमेजिन दैट यू आर नॉट जस्ट वेयरिंग क्लोथ्स, यू आर वेयरिंग जनरेशन्स ऑफ ट्रेडिशन। स्टे ट्यून्ड टू आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9, एंड दिस इज मी, योर आरजे लहरी। दैट्स अ वंडरफुल ट्रैक फॉलोड।

आइस इट्स योर एबिलिटी टू स्टे काम, और कभी कभी थोड़ा सा ह्यूमर भी ज़रूरी होता है, बिकॉज लाफिंग एट अ डिफिकल्टी डजंट मेक यू केयरलेस, इट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर. स्टे ट्यून्ड टू आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9. वी हैव अनदर ब्यूटिफुल सॉन्ग एंड विल बी बैक विथ आर व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक अ लेमनेड आउट ऑफ इट.

0: लगता है बॉस हमें टॉस करना।
1: अब क्या करें?
0: जो भी करेंगे एक साथ करेंगे।

0: FM Rainbow 101.9 Musically yours.
1: प्रोग्राम डॉक्टर माइक पर सिलसिले के तहत आज रात यानी 7 अगस्त 2026 को रात 9:30 बजे उर्दू प्रोग्राम नए रंग आकाशवाणी 101.9 FM रेनबो पर आप सुन सकते हैं डॉक्टर आयशा सलमा गायनोकोलॉजिस्ट से लिया गया इंटरव्यू ब्रेस्ट फीडिंग वीक के तहत ब्रेस्ट फीडिंग पर कुछ मालूमात और मशवरे सुनना न भूलें।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है। स्टूडियोज की घड़ी में 9:32 और 47 सेकेंड्स हुआ जाते हैं। अब आप सुनते हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

0: आप समाप्त कर रहे थे किरते कलामे पाक। सामान आइए, प्रोग्राम नारंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। हमारे प्रोग्राम की अगली पेशकश है हरफे ताबिंदा। समाप्त कीजिए, तहरीर और पेशकश है फहमीदा फहमोश की।
1: एक आदत बना ले, अपने माल के साथ साथ अपनी सलाहियतों का भी सदका किया करे। किसी को मुखलिसाना मशवरा दे, किसी का मुफ्त काम कर दे, किसी को कोई मुश्किल आए तो उसकी आसानी में तब्दील कर दे, किसी का दुख बांट ले, किसी की तसल्ली की वजह बन जाए। यकीनन बहुत सुकून पाओगे। जुबान और दिल का बड़ा गहरा रिश्ता है, उनमें से अगर एक बुरा और एक साफ हो, दिल साफ जुबान कड़वी या मीठी जुबान दिल मैला, तो दोनों ही इंसान के लिए खसारे का सबब है। इसलिए दिल जुबान दोनों को साफ रखो और हक परस्त बनो। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे इतना ही खुश रहोगे। मैंने देखा है ऐसे लोगों को जो दूसरों को तो जीने का तरीका बताते हैं, मगर जब वो खुद हंसते हैं तो उनकी आंखों के किनारे भीग जाते हैं। जो करोगे उसका बदला जरूर पाओगे, ये रात गई बात गई वाला कानून अल्लाह ताला के यहाँ नहीं चलता है। जो चीज़ टूटकर दोबारा जुड़ती है वो उस कामिल शय से ज़्यादा खूबसूरत होती है जो कभी टूटी ही नहीं। इसकी दरारें बका की कहानी सुनाती हैं, इसके जख्म सब्र और हौसले की सरगोशियाँ करती हैं और इसकी खामियाँ असल ताकत की झलक दिखाती है। कमाल बेऐब ज़रूर होता है, मगर इसके पास कोई कहानी नहीं होती। गिरकर दोबारा उठने वाली चीज़ उससे ज़्यादा रोशन और दिलकश होती है जिसने कभी तूफान का सामना ही ना किया हो। आपने माजी में चाहे जितने भी गुनाह किए हो, मगर कभी ये मत सोचे कि आप अब बदल नहीं सकते। गुनाहगार से गुनाहगार इंसान भी अल्लाह का महबूब बनने के लिए सिर्फ एक तौबा की दूरी पर होता है। आप भी बस एक तौबा की दूरी पर हैं, फिर सब बदल जाएगा। बस अल्लाह

0: जी, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सिजेरियन सेक्शन हो, डिलीवरी के बाद विदिन जो फर्स्ट आवर होता है, जो गोल्डन आवर जो हम कहते हैं,
1: जी
0: उस वक्त पे अगर माँ वजनल डिलीवरी के बाद तो इजीली फीडिंग स्टार्ट कर सकते,
1: जी
0: सिजेरियन के बाद क्या है, माँ थोड़ा होश में नहीं रहती है
1: ओके
0: बिकॉज ऑफ
1: राइट
0: एनेस्थीसिया,
1: हाँ
0: तो एकदम जब माँ रेस्ट कम्प्लीटली एनेस्थीसिया से बाहर आते हैं, इफ़ शी इज़ कम्फर्टेबल देन शी कैन स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल,
1: ओके
0: विद इन फर्स्ट आवर स्टार्ट करना विल बी बेहतर.
1: ओके
0: एंड क्योंकि फर्स्ट जो इनिशियल 3 डेज होते हैं
1: जी
0: उसमें
1: जी
0: येलोइश कलर में मिल्क आता है जिसको कोलेस्ट्रम
1: ओके
0: हम कहते हैं,
1: ओके ओके
0: कोलेस्ट्रम तो बहुत बहुत बहुत इफेक्टिव है और बहुत कीमती चीज़ है मैं बोलती हूँ,
1: जी
0: क्योंकि उसमें जितनी ताकत होती है जो बाद में जो मिल्क आता है कंपैरेटिवली उसमें ज़्यादा ताकत होती है, तो उसको डिस्कार्ड नहीं करना है. आप अपने औरतें क्या करते हैं, वो दूध नहीं आ रहा बोल के बस जो भी कोलेस्ट्रम आ रहा
1: जी हाँ
0: उसको
1: जी
0: निकाल
1: जी
0: के डिस्कार्ड कर देते,
1: जी
0: नहीं वैसा नहीं करना है. इनिशियली आप कोलेस्ट्रम देना है बेबी को,
1: जी जी
0: डेफिनेटली आपको 3-4 डेज लगते हैं मिल्क
1: ओके
0: एस्टैब्लिश
1: हाँ
0: होने के लिए,
1: हाँ
0: उस दौरान आप लगातार रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग देते रहेंगे तो
1: ओके
0: ऑटोमेटिकली ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ जाता.
1: ओके लेकिन जैसा आपने खुद कहा कि यानी वजाइनल डिलीवरी
0: जी
1: और सिजेरियन
0: जी
1: में जो फ़र्क होता है, कंफर्टेबल नहीं होती माँ
0: जी
1: सिजेरियन में, तो वैसी माँ के लिए यानी आपने जो कहा कि इनिशियल फर्स्ट आवर में
0: जी
1: या कुछ अवस बाद, तो उनके लिए
0: जी
1: क्या करना चाहिए? वैसे बच्चों को भी तो वो ब्रेस्ट फीडिंग की बहुत ज़रूरत है ना।
0: उस टाइम पे देखिए, हम इनिशियली जब डिलीवरी के बाद विद इन फर्स्ट आवर जो हम इनिशिएट कराते हैं ब्रेस्ट मिल्क, तो
1: जी
0: उस टाइम पे फैमिली सपोर्ट भी ज़रूरी रहता है, और
1: ओके
0: हमारे हॉस्पिटल्स में तो नर्सिंग स्टाफ रहता है जो वेल
1: ओके
0: ट्रेन्ड रहते हैं, तो वो लोग भी हेल्प करते हैं, लैक्टेशन कंसल्टेंट जो बोलते हैं
1: अच्छा
0: वो
1: ओके
0: लोग गाइड करते हैं कि कैसे फीड देना है, कैसे लैच कराना है बेबी को.
1: ओके तो यानी ब्रेस्ट फीडिंग के बाद यानी बच्चा जो दूध माँ का दूध पीने वाले बच्चों की जिस्मानी और जहनी नशोनुमा पर क्या असर पड़ता है, वो बच्चे किस तरह से यानी डेवलप होते हैं कंपेरेटिवली टू अदर चिल्ड्रन?
0: जी, जब जो बच्चा ब्रेस्ट मिल्क लेता है एक्सक्लूसिवली, तो उसके जो माइलस्टोन्स है वो एवरी मंथ प्रॉपरली अचीव करता है. सेकंड चीज़, उसका IQ लेवल भी अच्छा रहता है
1: अच्छा
0: कंपैरेटिवली, जब हम कंपेयर करते हैं फॉर्मूला मिल्क से तो
1: ओके
0: IQ लेवल भी अच्छा रहता है. एंड द फ्यूचर में जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं बच्चे को, जैसे कि डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है,
1: हाँ
0: हाइपरटेंशन है, इसका भी रिस्क कम होता है
1: ओके ये
0: जो
1: तो
0: ब्रेस्ट मिल्क लेते हैं
1: अच्छा
0: बेबीज़.
1: ये तो बहुत बड़ी बात है कि
0: जी
1: जो प्रॉब्लम ज़्यादातर आजकल जो देखे जाते हैं छोटे बच्चों में भी हम देखते हैं कि डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं वो लोग, वो बच्चे
0: जी
1: भी,
0: जी
1: तो ये सब बीमारियों से बच्चे दूर रहेंगे और
0: जी
1: आईक्यू लेवल भी बढ़ेगा, तो इनसे तो
0: यस
1: उनका फ्यूचर भी ब्राइट होगा बहुत ज़्यादा।
0: जी
1: तो ये इसकी अहमियत, इतनी ज़्यादा अहमियत होती है माँ के दूध
0: जी
1: की। और माँ के बारे में भी कुछ बताइए कि जो माएँ ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं यानी डिलीवरी के बाद ही, तो उनकी सेहत पे उनके लिए क्या फ़ायदे हैं इसके,
0: जी
1: उनकी सेहत बरकरार रहती है
0: जी
1: इससे?
0: ब्रेस्ट मिल्क से ये रहता है कि जब वो ब्रेस्ट फीड करती है इनिशियली मदर और बेबी का बॉन्ड बढ़ता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग, और जो मदर जब बेबी को स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से फीड करती है तो जो गर्मी पैदा होती है दोनों के दरमियान, उससे बच्चे के ग्रोथ में बहुत ज़्यादा वी कैन सी द डिफरेंस कि उसका ग्रोथ भी अच्छा रहता है और इमोशनल लेवल भी उसका अच्छा रहता है. ब्रेस्ट मिल्क से मदर को क्या फ़ायदा है, इज़ डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है वो कंपैरेटिवली लेस होती है, क्योंकि जितना मदर फीड करेगी उसका जो यूटरस है, जो बच्चेदानी है डिलीवरी के बाद जो
1: हाँ
0: बड़ी होकर रहती,
1: जी
0: वो जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट होती, कॉन्ट्रैक्ट होने पर ब्लीडिंग कम हो जाती है उसको.
1: और बाज दूध पिलाने वाली माओं को ये देखा जाता है, ये कहा जाता है डॉक्टर्स ने ऐसा कहते हैं कि बहुत सारी बीमारियों से वो माएं दूर रहती हैं, तो ऐसी कौन सी बीमारियां और किस तरीके से माएं से दूर रहती हैं?
0: बेसिकली जो फीड देते हैं एक्सक्लूसिवली तो उन लोगों के उसमें ही क्या ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर का रिस्क बहुत कम है.
1: हाँ तो ये बहुत सारी माओं को आजकल यानी यही प्रॉब्लम हो रही है
0: जी
1: कि वो लोग दूध चाहते हुए भी अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रही हैं, और जैसा ये बीमारियां ब्रेस्ट कैंसर वगैरह बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है आजकल लेडीज़ में, तो इसके लिए क्या करना चाहिए माओं को अगर ब्रेस्ट फीडिंग अगर उनको नहीं आ रहा है तो, उसके लिए आप कुछ मशवरे दीजिए।
0: जी देखो, ब्रेस्ट मिल्क सबको आता है
1: जी
0: बट उसके लिए प्रॉपर टेक्निक से उसको सीखना है कि हम कैसे फीड देना है बेबी को,
1: ओके
0: इसीलिए कहते हैं इट इज़ अ लर्न स्किल, यानी
1: अच्छा
0: आपको सीखना पड़ता है कि फीड कैसे
1: हाँ
0: देना है बेबी को. डेफिनेटली फर्स्ट मदर को नहीं पता चलता है कि कैसे देना, कैसा लैच कराना,
1: जी
0: प्रॉपर
1: जी
0: लैचिंग टेक्निक होती है जिसमें मदर और बेबी दोनों कंफर्टेबल रहना है,
1: ओके
0: जितना कंफर्टेबल रहेंगी वो उतना आराम से वो ब्रेस्ट मिल्क दे सकती है बेबी को, जितना बेबी सक करता मिल्क उतना
1: ओके
0: ज़्यादा प्रोडक्शन होता.
1: अच्छा
0: अक्सर क्या करते, डिलीवरी के बाद दूध ही नहीं आ रहा, बच्चा दूध
1: हाँ
0: नहीं पी
1: राइट
0: रहा बोल
1: हाँ
0: के वो
1: यही
0: लोग
1: सुनने में
0: फीडिंग
1: आता
0: देना
1: है
0: छोड़ ही
1: जी
0: देते. हम जितना इनक्रेज करते हैं कि जितना बच्चा सक करता

0: जी
1: उतना ज़्यादा दूध प्रोडक्शन होता और उतना
0: ओके
1: सप्लाई भी होता।
0: हाँ, तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो भी दूध सप्लाई होता बच्चा सक जो करता
1: जी
0: वो बच्चे के लिए सफिशिएंट है, बच्चे के लिए
1: सफिशियंट है।
0: काफ़ी है वो,
1: हाँ
0: लेकिन
1: जितना देखो
0: अक्सर
1: इनिशियली
0: हाँ
1: बच्चा
0: जी
1: थोड़ा ही पीगा, उसका स्टमक का जो
0: हाँ
1: साइज है
0: जी
1: बहुत कम
0: जी
1: होता, जितना उसको आना है उतना आएगा।
0: ओके
1: द ओनली थिंग कि आप प्रॉपर टेक्निक से देना है,
0: हाँ
1: कंफर्टेबल पोजीशन में देना है,
0: जी
1: और वो प्रॉपर होल्डिंग टेक्निक के था जिससे बच्चे को एक
0: ओके
1: स्ट्रेट लाइन में हमको होल्ड करना है, लिफ्ट
0: ओके
1: करके लैचिंग मैकेनिज्म ये था जिससे बच्चे का ओपन माउथ वाइड ओपन रहना है,
0: जी
1: चिन
0: जी
1: टच करना है, ये सब रहते
0: ओके
1: टेक्निक। ये अगर हम सही टेक्निक पकड़ लिए तो बेबी को
0: हाँ
1: हम आराम से फीड दे सकते। बेबी जितना कंफर्टेबली रहेगा और जितना अच्छे से सक करेगा दूध, उतना ज़्यादा दूध आएगा।
0: जी, तो आपने जैसा कहा है कि जो टेक्निक है
1: जी
0: बच्चे को,
1: जी
0: यानी बच्चे को किस तरीके से
1: जी
0: कैच करना है बच्चे को, यानी पोजीशन कैसा रहना
1: जी
0: चाहिए बच्चे का, ये सब भी तो माँ को सिखाना चाहिए
1: सिखाना यही
0: हॉस्पिटल
1: है।
0: में
1: डिलीवरी
0: ही
1: के बाद ये
0: जी।
1: ज़रूरी है कि जो सिस्टर्स रहते हैं,
0: हाँ हाँ
1: लैक्टेशन कंसल्टेंट जो रहते हैं, ये सिखाते हैं, तो
0: हाँ
1: मदर्स भी उतना अपने आप को मोटिवेट करना कि हमको फीड देना है।
0: जी।
1: तो जितना वो लोग मोटिवेट होंगे तो ही फीड दे सकेंगे। मेरे को नहीं आ रहा बोल के आप बैक स्टेप नहीं ले
0: ओके
1: सकते, आप भी मोटिवेट होना कि मैं मेरी बेबी को फीड दूंगी। तो
0: ओके
1: वो एंड ये भी है कि न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू भी इम्पॉर्टेंट है,
0: हाँ, न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू
1: वेरी
0: तो
1: वेरी
0: बहुत
1: इंपॉर्टेंट। क्या
0: इम्पोर्टेंट है
1: होता है डिलीवरी के बाद मदर को कम्प्लीटली खाना खाने से दूरी रख देते हैं,
0: जी जी
1: प्रेगनेंसी में जितना खिलाते डिलीवरी के बाद कम्प्लीटली माँ को
0: अच्छा
1: खाने से
0: जी
1: दूरी रखते हैं। पानी कम पीने के लिए बोलते, कहते हैं कि
0: अच्छा
1: पानी पीने से पेट फूल जाता, एंड
0: हाँ
1: ये बोलते हैं कि दाल नहीं खाना, दाल से पस आता,
0: हाँ
1: एंड गर्मी की चीज़ें नहीं खाना, बच्चे को गर्मी होती, इमोशंस हो
0: जी
1: जाते गर्मी से,
0: जी
1: सर्दी से
0: जी
1: बच्चे को न छाती भर जाती।
0: जी
1: बट ऐसा नहीं है,
0: ओके
1: आप एवरी 2 आवरली आप फीड लेते रहना, क्योंकि
0: ओके
1: जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है 600, नॉर्मली जो औरतें को होती है उससे 600 किलो
0: अच्छा
1: कैलोरी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है,
0: ओके
1: तो शी कैन हैव एवरीथिंग, हर
0: अच्छा
1: चीज़ खा सकते हो। एवरी 2 आवरली यू नो खाते रहना हर चीज़, यानी आप अच्छे से प्रोटीन रिच डाइट, आयरन रिच डाइट एंड फाइबर रिच डाइट लेना,
0: जी
1: क्योंकि कॉन्स्टिपेशन इशू भी होता है
0: जी
1: डिलीवरी के
0: जी
1: बाद, तो उसके लिए भी फाइबर रिच फूड लेना है अपने को, एंड कंपलसरी दाल लेना है, सीरियल्स जो
0: जी
1: पल्सेस हैं, एंड वाटर इंटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
0: ओके
1: कभी भी फीड देने से पहले भी वाटर लेना, मिनिमम हाफ
0: जी
1: लीटर, फीड देने के बाद भी फिर हाफ लीटर पानी पीना है,
0: जी
1: एंड फ्रीक्वेंटली आप मिनिमम 4 to 5 लीटर्स पानी पीना, क्योंकि जो भी हम मिल्क ले रहे हैं अपनी ब्रेस्ट मिल्क के जरिए वो आप डिहाइड्रेट हो जा रहे हैं, तो
0: अच्छा
1: जितना आप हाइड्रेट रखेंगे बॉडी को आपको मिल्क प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता।
0: ओके, तो मिल्क
1: जी
0: प्रोडक्शन के लिए बॉडी को तो हाइड्रेटेड रहना ज़रूरी है।
1: यस
0: इसके अलावा कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जिससे मिल्क प्रोडक्शन अच्छा हो, ताकि बच्चे को जो सफिशिएंट हो, ये भी बहुत
1: जी
0: ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
1: जी ऐसी वंडर गजा कुछ भी नहीं है
0: जी।
1: जी। आप नॉर्मल घर पे जो भी बन रहा है, एवरीथिंग यू कैन हैव,
0: ओके
1: एवरीथिंग यानी एवरीथिंग, देर आर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन डाइट फॉर मदर, आप सब चीज़ें मदर को दे सकते हैं।
0: जी, अभी यानी ये तो हो गई हमारी बातचीत इस बारे में
1: जी
0: कि ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है, लेकिन आप ये बताइए कि काम करने वाली माएँ दूध पिलाने का सिलसिला किस तरीके से कायम रख सकती
1: यस
0: हैं, ये
1: यस
0: भी एक
1: यस
0: बहुत अहम सवाल
1: ये
0: है
1: एक्सपीरियंसड है, वी आर सो
0: जी।
1: एक्सपीरियंस इन दैट, बट क्या है यू कैन कंटिन्यू, ऐसा नहीं है कि वर्किंग मदर्स कैन नॉट डू, बट जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे वी कैन टॉक टू द पर्सन कि वी वांट टू फीड द बेबी, दे कैन इफ दे कैन प्रोवाइड अ रूम, यानी आपको एक रूम प्रोवाइड करते हैं तो
0: हाँ
1: आप आपके बेबी को भी कैरी कर सकते हैं इफ पॉसिबल है, नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि आप ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करके भी आप स्टोर
0: ओके
1: कर सकते हैं,
0: अच्छा
1: नॉर्मल टेम्परेचर पे आप 6 आवर्स तक स्टोर कर सकते हैं।
0: ओके
1: अगर आप फ्रिज में रखना है, रेफ्रिजरेटर में
0: अच्छा
1: रखना है तो आप 6 डेज तक भी रख सकते हैं, अगर आप
0: ओके
1: फ्रीज करना है, डीप फ्रीज में रखना है तो आपको आप 6 मंथ्स तक भी रख सकते हैं।
0: ये
1: सो आप
0: बहुत ही अच्छी
1: एक्सप्रेस करके,
0: मालूमात है जो आप हमारे
1: जी
0: सामाइन को दे
1: सिक्स
0: रही
1: सिक्स
0: हैं
1: सिक्स रूल बोलते हैं उसको,
0: ओके
1: जी तो आप ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके आ सकते हैं आराम से, उसमें
0: ये
1: आपको
0: बात
1: जी
0: जो आपने बताया 666 रूल, ये
1: जी
0: बहुत सारी माओ क्या, बहुत
1: जी
0: सारे लोगों को
1: जी
0: इस बारे में पता नहीं होता है,
1: जी
0: तो आपने बहुत अच्छी मालूमात दी हमारे सामाइन को। और जिस तरीके से आपने कहा कि जहाँ पर लेडीज़ काम करती हैं वहाँ का
1: जी
0: एनवायरनमेंट किस तरीके से होना चाहिए, सपोर्ट
1: जी
0: किस तरीके से करना
1: सपोर्ट
0: चाहिए,
1: जी।
0: इसके अलावा घर पे उनके यानी दूध पिलाने वाली
1: जी
0: माओं के लिए किस तरीके की
1: जी
0: सपोर्ट चाहिए, उनके शौहर
1: हाँ
0: से या उनके फैमिली मेम्बर्स से।
1: जी अक्सर जैसे मैंने बताया कि प्रेगनेंसी में जितना इम्पोर्टेंस देते हैं, डिलीवरी के
0: जी
1: बाद क्या है वो इम्पोर्टेंस थोड़ा डिवाइड हो जाता है मदर एंड बेबी में। व्हाट आई एडवाइज इज मदर को क्रिटिसाइज ना करें
0: हाँ
1: कि आप ये खाए तो बच्चे को ये हो रहा,
0: अच्छा
1: आप ये पिए तो बच्चे को ऐसे हो रहा। मदर कभी भी अपने बच्चे को हार्म करना नहीं चाहती।
0: राइट
1: हाँ अगर उसको आप क्रिटिसाइज करेंगे तो इमोशनली वो ऑलरेडी क्या है डिलीवरी के बाद हार्मोन्स पूरे डाउन हो जाते हैं अपने,
0: यस
1: और अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो इमोशनली वो और ज़्यादा डिस्टर्ब होती. जितना स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा उतना वो अपने बेबी को केयर नहीं कर सकती. और क्या है, ये मिल्क प्रोडक्शन पे भी इफेक्ट होता है.
0: जी जी
1: स्ट्रेस वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मिल्क प्रोडक्शन को कम करता है.
0: ओके
1: सो डिलीवरी

0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: उससे
0: राइट,
1: पूरा एंगोर्ज हो जाता, ब्रेड रेडनेस आ
0: अच्छा
1: जाना, बहुत ज़्यादा पेन होना।
0: हाँ
1: उस टाइम पे क्या करना है आपको, आप एक पेन किलर ले सकते हैं पेन कम करने के लिए। पेन किलर का काम क्या है, पेन भी कम करता है, इन्फ्लेमेशन जो स्वेलिंग है रेडनेस है उसको भी कम करता है। एंड आप वार्म क्लॉथ से उसको मसाज करना ब्रेस्ट को।
0: ओके
1: जब मसाज करेंगे तो फिर से जो भी लाइक लम्ब्स फॉर्म है वो पूरे वहाँ से फिर मिल्क सप्लाई होना
0: ओके
1: स्टार्ट हो जाता
0: ओके
1: है। एंड उसके बाद आप फीड देने के बाद आप फिर कोल्ड कंप्रेस भी कर सकते पेन
0: अच्छा
1: कम करने के लिए। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा तो आप पंप यूज़ कर सकते हैं, जो ब्रेस्ट पंप्स आ रहे हैं उससे भी आप एक्सप्रेस करके दे सकते हैं। अगर बॉटल
0: अच्छा
1: से नहीं देना है तो आप स्पून से भी दे सकते हैं, टिल आपका निपल नॉर्मल हो जाए तब तक।
0: ओके
1: और भी हम देखते हैं कि अगर वो ट्रीट नहीं करें हम तो वैसे ही लम्ब्स बन के वो एब्सेस पे डाल
0: हाँ
1: देता है, यानी
0: राइट
1: पस
0: जी
1: आना शुरू
0: जी
1: हो जाता, अंदर
0: जी
1: भसना भरना शुरू हो जाता, तो उसको हम अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में सीरम के जरिए निकाल सकते हैं
0: अच्छा
1: एंटीबायोटिक कवरेज के अंडर, या
0: जी
1: फिर उसको ड्रेन कर सकते हैं थोड़ा वहाँ पे कट लगा के हम उसको पूरा
0: ओके
1: ड्रेन करके एंटीबायोटिक कवरेज दे सकते हैं, वैसे भी हील हो जाएगा। तो
0: जी
1: दैट्स व्हाट, कि कम्प्लीटली ब्रेस्ट को एम्प्टी करना है।
0: ओके
1: अगर
0: हाँ
1: आपको समझ रहे कि बच्चा पी रहा बट स्टिल आपको स्वेलिंग है पेन है, दैट मीन्स बेबी सही नहीं पी रहा
0: ओके
1: है, वो वैसे ही जमा होके आपको उल्टा एब्सेस पे डाल देता हो।
0: जी
1: तो
0: जी
1: कंप्लीट जब भी आप फीड दे रहे तो मिनिमम 15 से 20 मिनट्स कंप्लीट वन साइड आपको देना है,
0: जी
1: और अब एक बार आपका फीड हो गया तो आपका ब्रेस्ट ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाता
0: ओके
1: पूरा
0: फिफ्टीन टू
1: दे।
0: ट्वेंटी मिनट्स वन
1: यस, वन
0: साइड
1: साइड देना
0: जी
1: है तकरीबन बेबी ना, जब अगर उसको लाइक स्टमक फुल हो गया तो
0: हाँ
1: बेबी सो जाएगा आराम से,
0: जी
1: 2 आवर्स तक तो सो जाएगा। एंड
0: ओके
1: ब्रेस्ट फीड कभी भी डिमांड पे देना है,
0: हाँ
1: ऐसा नहीं कि
0: जी
1: 2 आवर्स 3 आवर्स, ऑलवेज फीड ऑन डिमांड।
0: ओके तो आपने जैसा कहा कि ये सब आपने जो तदाबीर बताई हैं
1: जी
0: अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो ये सब करने से ठीक हो जाएगा, हील हो जाएगा, डॉक्टर के पास रुजू होने, उससे ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस दिखे तभी डॉक्टर के पास रुजू होने
1: हाँ,
0: की
1: अक्सर
0: ज़रूरत
1: क्या
0: है
1: है अगर ब्रेस्ट एब्सेस या मैस्टाइटिस हो गया जिसमें, तो
0: जी
1: इन्फेक्शन अगर हो गया तो पेशेंट को फीवर आना शुरू
0: हाँ
1: हो जाएगा।
0: हाँ
1: अगर ऐसा नोटिस करे कि फीवर है और पेन और स्वेलिंग रेडनेस कम नहीं हो रही ये सब
0: जी
1: चीज़ें करने के बावजूद, तो देन वी
0: हाँ
1: हैव टू मीट द डॉक्टर।
0: ओके जैसा कि इस समय आप जानते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है और हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर आयशा सलमा साहबा से। ये बातचीत का सिलसिला तो हम जारी रखेंगे, उससे पहले लीजिए सुनिए ये नगमा।

0: जी जी जी
1: जी कुछ और तो मेडिकेशन नहीं है?
0: मेडिकेशन है जो ब्रेस्ट मिल्क को कम्प्लीटली स्टॉप कर देता है,
1: ओके
0: दैट इज़ गिवेन ओनली व्हेन बेबी दूध पीना रोक दिया, बट स्टिल
1: जी
0: मदर को बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो
1: ओके
0: आ रहा
1: ओके
0: है एंड
1: हाँ
0: इसके वजह से पेन बहुत हो रहा, जो घर की चीज़ें जो मैं
1: जी
0: समझाई थी जैसे
1: जी
0: कि हॉट वार्म कंप्रेस वगैरह सब यूज़ करना है,
1: हाँ
0: उसके बावजूद भी नहीं कम हो रहा तो देन शी कैन टेक मेडिकेशन।
1: अच्छा, तो इससे
0: हाँ
1: कुछ कॉम्प्लिकेशन साइड इफेक्ट्स तो
0: नहीं
1: नहीं होंगे
0: नहीं
1: माँ को? ओके
0: नहीं नहीं नहीं नहीं होंगे जी।
1: यानी ये सिलसिला तो हमारा चल रहा है। और एक नगमा हम सामाइन को सुनाते हैं इस सिलसिले में, यानी इस इंटरव्यू के बीच में। तो सामाइन लीजिए, सुनिए ये नगमा।

0: FM Rainbow 101.9।
1: अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा, हैदराबाद तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग बन रही, कंपनियां खुल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोड, फ्लाईओवर और ब्रिज बनाते जा रहे। जिधर देखो उधर महंगे महंगे गाड़ियां भागते हुए दिख रही। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे मगर अपने हैदराबादियाँ हैं कि सुन रहे नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेको बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियां नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियां चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतजार करते रहते। अगर बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियां चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया ने तो गांधी को पहुँच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत ज़रूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुंचो, हेलमेट और सीट बेल्ट पहन के गाड़ियां चलाओ।

दोस्तों, आपने सुना फिल्म यस बॉस का ये खूबसूरत गीत, जिसमें अपने सपनों के साकार होने की दास्तां या कोशिश या दुआ कर रहे थे बादशाह खान। इन्हें किंग खान कहें, सुपरस्टार कहें, बादशाह कहें, बाजीगर कहें, जवान कहें या पठान कहें, कोई भी नाम हम इनके लिए जोड़ दें या कोई भी नाम से हम इन्हें पुकारें, ये तो है ही वक्त के बादशाह। और ये सिर्फ चेहरे से ही शाहरुख नहीं, ये हमा रुख ही शाहरुख है। जी हाँ, ये तो ऐसे वर्सटाइल पर्सन हैं, ऐसे हमा रुखी शख्सियत हैं कि इनकी कामयाबी की, इनके ख्वाबों के साकार होने की दास्तां अगर हम सुनना चाहें तो ये गीत जो अभी

आपने सुना है, ये बिल्कुल इनके ख्वाबों की सच्ची ताबीर साबित होता है। काश हमारे साथ भी कुछ ऐसा होता कि हमारे साथ भी हमारे ख्वाब भी इसी तरह सच्चे हो जाते। ख्वाब ज़रूर सच्चे हो सकते हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश भी वैसी ही होनी चाहिए। कहा जाता है कि जहाँ पर चाह होती है वहाँ पर राह होती है, और हमारी ज़िंदगी या हमारी तकदीर उसी तरह लिखी जाती है जिस तरह हमारी सोच होती है। हम जो चाहते हैं वही हमारे साथ होता है, बस ज़रूरत इस बात की है कि चाहत अच्छी चीज़ की जाए। बहरहाल चाहत की, पाने की, ख्वाबों की बातों का ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा में। फिलहाल आपको बता दें कि स्टूडियोज़ की घड़ी में वक्त हुआ है 10:27 और पूरे 35 सेकेंड्स। तो आप सुनते रहें FM रेनबो 101.9 पर गीतों से, सुरीले गीतों से सजा आपका अपना प्रोग्राम जिसका नाम है गीत सुरीले गाता जा। तो आइए हम अगले गीत की जानिब बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं क्या कि आपकी भी ख्वाहिश या आपको भी जो मिल चुका है क्या आपकी ख्वाहिश के बिल्कुल बराबर है या ख्वाहिश की तरह ही है। आइए जानने की कोशिश करते हैं फिल्म हिमालय की गोद से लिया गए इस गीत से।

दोस्तों, आपने ये गीत सुना फिल्म हिमालय की गोद से। ये फिल्म बनी थी सन 1965 में और इस गीत को आवाज दी थी मुकेश जी ने। और ये गीत फिल्माया गया था मनोज कुमार जी और माला सिन्हा जी पर। बहुत ही खूबसूरत इनकी जोड़ी उस दौर में मानी जाती थी और इस जोड़ी की तरह ये फिल्म भी बेहद कामयाब रही। न सिर्फ ये फिल्म कामयाब रही बल्कि इस फिल्म के जितने भी सॉन्ग्स थे वो तमाम गीत भी बहुत पसंद किए जाने लगे। और ख़ास तौर पर ये गीत जो अभी आपने सुना है वो बहुत ही पसंदीदा गीत हर दौर का रहा है। दोस्तों, गीत सुरीले गाता जा में हमारी आपकी बातचीत चल रही है और कुछ प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें भी हो रही हैं। जिस तरह से हमारी बातें गीतों के हवाले से होती हैं, इसी तरह हम आपको कुछ ख़ास जानकारी भी देना चाहते हैं। तो आज का दिन 7 अगस्त है, ये तो आप जानते ही हैं, और हम आपको बताते हैं कि आज के दिन की खसूसियत क्या है। दोस्तों, आज का दिन जो कि मनाया जाता है नेशनल हैंडलूम डे के तौर पर, जिसे हम कौमी यौम हथकरघा भी कहते हैं। आज के दिन का यानी कि इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि कारीगरों की हौसला अफजाई की जाए और माशी सकाफत को फ़रोग़ दिया जाए। 7 अगस्त सन 1905 को इस सिलसिले में एक तहरीक स्वदेशी शुरू की गई थी और इस दिन हथकरघा बुनकरों और मजदूरों के समाजी और माशी खिदमात को खिराज अकीदत पेश की गई और हर साल इसी दिन इन बुनकरों कारीगरों को इनके काम की वजह से खिराज अकीदत पेश की जाती है। तो हम AIR की जानिब से और स्पेशली हमारे प्रोग्राम की जानिब से हम उन तमाम बुनकरों और उन तमाम कारीगरों के लिए और जो भी हैंडलूम से रिलेटेड काम करते हैं या कपड़े से रिलेटेड काम करते हैं उन तमाम को खिराज पेश करते हैं और उन तमाम को मुबारकबादी देते हैं कि उनका काम सिर्फ उनकी हद तक ही मुबारकबाद का मुस्ताहिक नहीं है बल्कि ये सारे हिंदुस्तान के लिए पूरे गर्व की बात है। तो आइए इस सिलसिले में आपको सुनाते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। मेरे साथ जुड़े रहिए रेनबो के इन खूबसूरत रंगों में। प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा में।

दोस्तों, ये गीत अभी आपने सुना फिल्म सुई धागा से, जो कि बनी थी सन 2018 में। इस गीत को आवाज़ दी है दिव्या कुमार ने और मौसिकी से सजाया है अनु मलिक जी ने। इस गीत को लिखा है वरुण ग्रोवर ने और ये गीत फिल्माया गया था वरुण देवगन और अनुष्का शर्मा पर। तो दोस्तों, ये गीत उन तमाम क्राफ्ट्स पीपल के को ट्रिब्यूट के तौर पर हमने पेश किया है, जो कि अपने काम को अपने हाथ से करते हैं, जो कि सुई धागे से काम करते हैं और हमारी ज़िंदगी को आरामदेह बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो हम कपड़े पहनते हैं और जो बेहतरीन

दोस्तों, इस खूबसूरत गीत के बाद हम आपसे फिर जुड़ गए हैं प्रोग्राम गीत सुरीले गातजा में। कुछ प्यार भरी बातें हमारी चल रही हैं और कुछ आज के दिन की खूबी पर भी हमने आपसे बातें शेयर की और इससे मुतालिक गीत भी आपकी खिदमत में पेश किए हैं। दोस्तों, ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा लेकिन वक्त बहुत ही कम है। दोस्तों, हमने हमारे इस प्रोग्राम में बात छेड़ी थी सपनों को लेकर। जी हाँ, सपनों को इंसान किस तरह से साकार करता है और जब सपने साकार होते हैं तो किस तरह की खुशी उसे मिलती है। सपने अच्छे भी होते हैं और कुछ अच्छे नहीं भी होते हैं, जो कि हमें बुरे लगते हैं, उन सपनों को हम पसंद नहीं करते। लेकिन सपनों की बात ही कुछ और होती है। हम उन्हीं सपनों का तस्करा करते हैं जो सपने हमें बहुत ही प्यारे लगते हैं और यही ख्वाहिश भी करते हैं कि वो सपने कभी ना कभी पूरे ज़रूर होंगे। तो किसके सपनों में क्या है और कब किसका प्यारा सा सपना पूरा होगा, ये हर किसी को इंतज़ार रहता है। तो चलिए सपनों को साकार करने की बात करते हैं और किसी के सपनों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पेश करते हैं आपके लिए हमारे प्रोग्राम का ये गीत, लीजिए सुनिए।

0: सम कहां तुम कहां हम कहां ताल कहां सम कहां तुम कहां हम कहां तेरे कर तुम ना कर तुम तेरे कर तुम ना कर तुम हम तुम नाता साथ की पाता लता फात पता फात मेरा कच करामत
1: पापे ठेठ पापे ठेठ पापे ठेठ पापे ठेठ

दोस्तों, ये मज़ेदार गीत आपने सपनों के मुतालिक सुना और इस मज़ेदार गीत को आवाज़ें दे रहे थे किशोर कुमार जी और अमित कुमार जी। ये दो खूबसूरत और चुलबुले आवाज़ों ने अपना जादू बिखेरा और अपने सपने की रुदात तो बयां कर दी। अब आगे बढ़ते हैं कि अब कौन सा वो गीत है जो कि हमारे और आपके दरमियान है, जो कि गीत सुरीले गाता जा प्रोग्राम का आखिरी गीत है। दोस्तों, ये गीत भी हमने चुना है सपनों से ही रिलेटेड। तो आइए देखते हैं कि सपने क्या चाहते हैं, किस तरह की ख्वाहिश करते हैं। कुछ सपने कुछ चाहते हैं, लेकिन इस गीत में जानने की कोशिश करते हैं कि ये सपना क्या चाहता है। लीजिए सुनिए।

दोस्तों, ये खूबसूरत गीत आपने सुना फिल्म दिल है के मानता नहीं से। आवाज़ थी अनुराधा पौडवाल जी की। इसी खूबसूरत गीत के साथ हमारा ये प्रोग्राम, जिसका नाम है गीत सुरीले गाता जा, अब यहीं पर ख़त्म हुआ जाता है। दोस्तों, अगले प्रोग्राम में कुछ ख़ास गीत लिए, कुछ ख़ास बातें लिए आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। दोस्तों, हम अब प्रोग्राम नैरंग के उस पड़ाव पर आ चुके हैं जहां पर अब हमें आपसे अलविदा लेना है। लेकिन अलविदा लेने से पहले हम आपकी नजर करना चाहते हैं आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, जिसका नाम है पयामे शब। तो समाप्त कीजिए, पयामे शब पेशकश है मिस्टर जैदी जी की।

0: दिल की बात लबों पर लाकर अब तक हम दुख सहते हैं। दिल की बात लबों पर लाकर अब तक हम दुख सहते हैं। हमने सुना था इस बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं। हर सच बात हर जगह और हर शख्स के सामने बयान करना फायदेमंद नहीं होता। आज का पैगाम ये है कि इंसान को अपने जज्बात और राज हर किसी के सामने नहीं खोलना चाहिए। अपने दिल की बात ऐसे लोगों से कहनी चाहिए जो इखलास, समझदारी और हमदर्दी रखते हों। साथ ही ये सबक भी मिलता है कि अगर लोगों से तवक्कयात बहुत ज़्यादा वाबिस्ता कर ली जाएं, तो मायूसी का सामना करना पड़ सकता है।
1: दोस्तों, इसी खूबसूरत पैगाम के साथ हमारा आज का ये प्रोग्राम नैरंग अपने अख्तिताम को पहुंचता है। नैरंग की अगली नशिस्त में आपसे जरूर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया। ये आकाशवाणी हैदराबाद है। रात के 11 बजने ही वाले हैं। अभी कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और न्यूज बारी बारी से।
2: समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
3: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने

0: है कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है।
1: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिस

0: मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है जो विदेशी कोष को विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पर पिछले 10 वर्षों में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार किया गया। सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के माध्यम से में बदलाव लाने के लिए 9 अगस्त 2016 को जेम शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। राजस्थान के जयपुर में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की 16वीं बैठक आज सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। बैठक में ब्रिक्स देशों के व्यापार मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व व्यापार संगठन के नियमों पर आधारित निष्पक्ष और विकासोन्मुख व्यापार व्यवस्था का समर्थन करता है। उन्होंने विकासशील देशों के खाद्य सुरक्षा हितों की रक्षा पर भी जोर दिया। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरलम, माही और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी बारिश, गरज और बिजली कड़कने की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 has been passed by the Parliament, with the Lok Sabha approving it today. Rajya Sabha had passed the bill on Monday. The bill aims to address payment delays and simplify dispute resolution. The legislation provides that every central public sector enterprise must settle all invoices for procurement of goods or services from MSMEs on the trade receivables discounting system. As per the bill, if mediation fails in case of dispute, then the reference for arbitration must be made within 30 days from the date of termination of mediation. Both Houses of Parliament today witnessed opposition's uproar over several issues, including alleged police action during students' protest over the knee tissue. Both the Houses of Parliament once again faced disruptions following opposition's uproar over several issues, including police action during students' protest over the knee tissue. Due to the continued disruptions by the opposition members, both the Houses were adjourned for the day before lunch. Following opposition's uproar, question hour could not be taken up in both the houses. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's relations with Pakistan can only move ahead in an environment free of terror, hostility and violence. In a written reply in Lok Sabha today, Dr. Jaishankar said that Pakistan continues to follow the policy of cross-border terrorism and using terrorism as an instrument of state policy against India. The minister said India withdrew Most Favoured Nation or MFN status to Pakistan and hiked customs duty on all goods originating in or exported from Pakistan to 200% after the Pulwama terror attack. India attaches high priority on safety and security.

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Gaurav Dhawan Lal with my co-anchor Siddharth Singh.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंथ कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे। उदयन, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: तो आइए नजर डालते हैं सबसे पहले मुख्य आर्थिक समाचारों पर। घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 450 अंक से अधिक लुढ़का और निफ्टी 24,600 अंक से नीचे आया। संसद ने भुगतान में देरी तथा विवादों को सुगमता से हल करने के उद्देश्य से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया और भारत ने आईपीओ की संख्या के मामले में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा। जुटाई गई धनराशि के मामले में तीसरे स्थान पर रहा। सेबी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की हिस्सेदारी 15 साल के निचले स्तर पर, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों की इक्विटी भागीदारी रिकॉर्ड 70% तक पहुँच गई।
0: A quick look at the headlines in English. Benchmark domestic indices fall. Sensex drops over 450 points. Nifty settles below 24,600. Parliament passes MSME Development Amendment Bill 2026 to address payment delays and simplify dispute resolution. And India retains top position in IPO count, ranks third in fundraising in last fiscal year, highlights SEBI annual report, adds FPIs.

0: So listeners, before we move further into the program, we'd like to share with you that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब नजर डालते हैं प्रमुख घरेलू शेयर बाजार सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 456 अंक यानी 0.6% गिरकर 78,499 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 65 अंक यानी 0.3% की गिरावट के साथ 24,571 पर रहा. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 इंडेक्स 0.2% चढ़ा जबकि स्मॉल कैप 100 इंडेक्स मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ. इससे पहले कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर फिर बढ़ी चिंताओं के बीच बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई. पूरे कारोबारी सत्र के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी नुकसान में कारोबार करते रहे.
0: Benchmark domestic equity indices ended in negative territory today. The Sensex fell 456 points or 0.6% to close at 78,499. The Nifty dropped 65 points or 0.3% to settle at 24,571. In the broader market and the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index rose 0.2%, while the small-cap 100 index ended marginally down. Earlier, the markets opened with a gap down as crude oil prices rose amid renewed concerns over the Strait of Hormuz. The Sensex and the Nifty traded with losses throughout the session.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 16 के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए. सबसे ज्यादा नुकसान वाले शेयरों में बजाज फाइनेंस 6%, बजाज फिनसर्व 4.2% और आईसीसीआई बैंक 3.7% गिरा. वहीं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयर में 3.5% की तेजी रही. महिंद्रा एंड महिंद्रा 2.5% चढ़ा जबकि भारतीय स्टेट बैंक में 1% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई.
0: In sectoral indices on the BSE, 17 out of 28 sectors ended in the positive zone. Among the top gainers, focused IT advanced over 1.4%, auto rose 1.3%, and hospitals gained over 1.2%. In contrast, financial services dipped over 1.3%, private banks as well as top 10 banks shed nearly 1%, and consumer durables lost 0.9%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,209 companies declined, 2,044 advanced, and 207 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज $1 की तुलना में रुपया मामूली मजबूत होकर 95.21 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ. और उद्यम चर्चा की शुरुआत करते हैं आज जो बाजार का रुख रहा, जो प्रमुख घरेलू शेयर बाजार जो है आज गिरावट के साथ बंद हुए हैं. और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि 456 अंक जो है सेंसेक्स वो गिरा हुआ है, तो क्या कहेंगे बाजार को, किस तरीके से वो दिन आप देखते हैं?
2: देखिए, अगर आप पीछे बाजार का मूवमेंट जिस तरीके से रहा है, अभी भी जो गेन हुआ था, अगर आप निफ्टी देखें, क्योंकि सेंसेक्स में ऐसा लगता है पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो जब गिरता है 300-400 बहुत ज़्यादा लगता है, तो अगर उसको हटा के अगर निफ्टी देखें जहाँ पे विड्थ भी ज़्यादा है उसकी जी. निफ्टी 50, तो आप पाएंगे कि अभी भी ये 24,500 के आसपास है. और बीच में ऐसा एक वक्त आया था जब 24,000 उससे भी नीचे जा रहा था. तो जो रिबाउंड हुआ था, अगर रिबाउंड शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उस वो अभी बरकरार है. रिबाउंड का जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया, 100-150 निफ्टी में गया है, तो वो होल्ड ऑन कर रहा है
1: जी.
2: और उसमें जो इरोजन हुआ है, जो उसमें जो डेंट लगा है, वो तेल के दाम के ऊपर है. उम्मीद की जा रही थी, अब ये ग्लोबली है कि उम्मीद की जा रही थी कि हॉर्मोन्स

0: जी
1: स्टेट्स के ऊपर कुछ अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, ताकि वो स्टार्टिंग कंडीशन है, ताकि बाकी बाकी वहाँ पे जो न्यूक्लियर टॉक्स हैं, जिससे एक स्थायी कुछ अरेंजमेंट होगा मध्य पूर्व में, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट वो शायद आया नहीं, और उसके वजह से कुछ चिंताएं हैं, सोच है। उस हिसाब से आप देखेंगे कि कच्चे तेल के मार्केट में भी असर पड़ा है।
0: जी
1: दूसरा है कि अमेरिका में कुछ आंकड़े निकल रहे हैं रोजगार या बेरोजगारी से जुड़े हुए, तो वो आंकड़े इम्पोर्टेंट माने जा रहे हैं, क्योंकि क्या फेडरल रिजर्व जो है, जो उनके केंद्रीय बैंक है, क्या वो ब्याज दरों को साल के अंत में बढ़ाएंगे कि नहीं, उसके ऊपर सवाल पूछा जा रहा है,
0: जी
1: और मार्केट उस हिसाब से एडजस्टमेंट करेगी। ये बताता चलूं कि अभी जो फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन हैं, वो पीछे जैसे जो चेयरमैन थे, हेड्स थे, उनसे थोड़ा सा अलग चल रहा है उनका। वो उन्होंने कहा कि हम गाइडेंस नहीं देंगे, हम नहीं बताएंगे। पहले सारे जो चेयरमैन थे वो बता रहे थे कि हमें लगता है ऐसा होगा, तो मार्केट को गाइडेंस दे रहे थे, हैंड होल्ड कर रहे थे।
0: जी
1: तो इनका ये जो है वॉश, केविन वॉश, उनका मानना है कि ये सेंट्रल बैंक का काम नहीं है गाइडेंस देना।
0: जी
1: तो फिर तो जब आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही सोच के बारे
0: कितनी
1: में,
0: सारी अनिश्चितताएं
1: हाँ,
0: हैं।
1: तो फिर आपकी जो मीटिंग होती है उसके मिनट से आप निकालेंगे, तो आपको जो एक एडिशनल थॉट प्रोसेस है जो आपको इन्फॉर्म, क्योंकि देखिए जब अनिश्चितताएं होती हैं तो आप चारों तरफ से इन्फॉर्मेशन, जो डेटा है,
0: जी
1: इन्फॉर्मेशन, उसको लेके आप एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, इन्फॉर्मेशन के लिए डेटा की ज़रूरत है। जहाँ पे आपकी कमी होगी, तब जित थोड़ा सा भी डेटा आएगा, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन आएगा, मार्केट्स वॉलेटाइल हो जाती हैं, ऊपर नीचे साइडवेज मूवमेंट रोटेट करेगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। तो ये जब तक वहाँ पे, क्योंकि तेल तकरीबन हर आर्थिक एक्टिविटी में इस्तेमाल होता है, तो जब तक वो एसेंशियल, इट्स लाइक ब्लड,
0: जी
1: खून की तरह शरीर में, तो वो जब तक हमें उसके ऊपर एक अंदाज़ा नहीं हो
0: निश्चित जी
1: जाता रक्तचाप, खून में और क्या क्या है, ब्लड काउंट, आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, ये अगर आप हमें अंदाज़ा नहीं होता है,
0: जी
1: तो इन्फॉर्म्ड डिसीशन मेकिंग नहीं हो पाएगी। और ये हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है, फिक्स डिपॉजिट
0: जी
1: बॉन्ड की तरह नहीं है। तो जब आप हाई रिस्क लेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए होगा और कन्विक्शन होगा।
0: बिल्कुल। द
1: तो
0: मार्केट
1: ये
0: की जो पल्स है वो ये डिसाइड करेगा।
1: जी बिल्कुल, ये जो इन्फॉर्मेशन जैसे ही आएगा, फिर वो हजम करेंगे, खाने की तरह हजम करेंगे, फिर वो एक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट माइल्स इन्फॉर्मेशन। तो जो जो श्रोता है, ये उनको मेरा ये कहना है कि ये भी देखने का एक तरीका, कई और जो लोग इस प्रोग्राम में आते हैं वो अलग तरीके से देखते होंगे, और
0: जी
1: वो भी सही है। तो देखने का एक तरीका नहीं होता, कई तरीके से देखा जा सकता है। पर जो अभी जो मार्केट में जो मूवमेंट्स हैं, जो डायरेक्शन है, और जो आपका रिस्पॉन्स होगा, वो अनफॉर्चुनेटली अफॉर्चुनेटली ये जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं, मैक्रो डेवलपमेंट्स हैं, बड़े
0: जी
1: बिग पिक्चर में वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हम क्या ही कर सकते हैं? नॉर्मली क्या होता है, आप कंपनी को देखते हैं, सेक्टर को देखते हैं, फंडामेंटल्स देखते हैं, चार्ट बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अगर तेल का दाम एकदम से बढ़ने वाला होगा, तो उसका आप क्या करेंगे? उससे पहले ही तो
0: जी
1: सारा चेंज हो
0: उसका
1: जाएगा।
0: असर आएगा ही
1: जी,
0: इसमें।
2: सो जस्ट डू अ लिटिल जूम आउट हियर उदयन, यू नो वी आर इन अगस्त 2026, year started and a lot of uncertainties, lots of predictions for the year came out that this is possible analysis and information like that. So we're well past, we're just going past the middle of the year, and there's a range bound activity in the market, and you said that it is moving in a particular range, even responding or reacting in the range. Do you see a jump from this range possible, because now both the wars have been built in, the what geopolitics has been built in, and I think there is also an understanding that oil also will have a range to move in.
1: That's a very interesting question. So, there are points of time when you draw up a list of what you do not know. So, like a month back, we didn't know how the monsoon was going to be fare. We didn't know what oil was going to fare, how our economy has responded to this whole development, of which we have no role to play.
2: True.
1: And it is not as a

0: laudable though it may be, I would say that if this becomes the template and if it gets spread across whatever is happening here, you say that's not just government enterprises, but everybody has to follow. So even if a small guy, small enterprise, he or she has engaged a micro enterprise, unless you see cash flow is the critical, cash is king.
1: Absolutely.
0: So you can be you can become as large a company as you want. If your cash flow gets messed because of unrealized, you have done your job, but you're not got the...
1: The cycle of payment is not giving you the liquidity.
0: Then it's a problem. These things like these, delayed payments, is a problem which is chronic to our country. So unless we fix this, you will have a very large mortality of small enterprises. You know, the small enterprises, very, very micro enterprises, small enterprises, when they're moving from one level to the other, they're growing. They need cash flows to be smoothened. So one is you realize what you have done, your bills get paid on time. Second is you need credit. Now, if you have a credit system working, but realization is not happening, your credit worthiness is going. So both need to go hand in hand. And apart from that, you also, not everybody will be having a track record. So you will probably receivables and other things, the framework that's being worked upon, that's very super important. If somebody can actually show that regular receivables is coming, I mean, let's talk about a tea vendor. Okay, so that person may not be able to come up with grand financial statements, but that person can show through UPI inflows that this much is happening. Those loans probably are already happening, but they can be delivered at lower rates.
1: Right.
0: So you know this flow is coming, it's stable, and digitally that footprint is there. Bills are being paid on time. The person is there at one place. So that unless we fix both these things together, you will not. So you can have a great startup, but that startup,
1: So the ecosystem building has to be there.
0: Yeah, so you would need more and more new large companies or new small companies, which will become slightly bigger, and then go to IPO. That's how more investors will go and put in money. And people who have put in money in small enterprises, they get their money out and they put money in new enterprises. That's how the whole ecosystem works.
1: Right.
0: So this kind of a law, that is the important wheel that it's moving. So it may be at a narrow level, it's looking at this, but it's actually a much larger role it's playing.
1: Right.
2: बढ़ते अगली खबर की ओर. भारत के पूंजी बाजारों ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान मजबूती और लचीलापन दिखाया है. भारत ने आईपीओ की संख्या के मामले में विश्व स्तर पर अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा, जबकि जुटाई गई धनराशि यानी फंड रेज्ड के मामले में भारत तीसरे स्थान पर रहा. कल जारी सेबी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार नियामक ने कहा कि प्राथमिक इक्विटी बाजार यानी प्राइमरी इक्विटी मार्केट मजबूत बना रहा, हालांकि कॉरपोरेट बॉन्ड के माध्यम से जुटाई गई धनराशि में 8.4% की कमी आई और ये घटकर 9.1 लाख करोड़ रुपए रह गई. ये चार वर्षों में पहली गिरावट है. वहीं पब्लिक डेप्ट इश्यूएंस यानी सार्वजनिक ऋण प्रतिभूतियों के इश्यूज में लगभग 39% की वृद्धि दर्ज की गई. इसके अलावा म्युनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से धन जुटाने में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई और 14 इश्यूज के जरिए कुल 1,756 करोड़ रुपए जुटाए गए. सेबी ने क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी सीएस की नई व्यवस्था भी शुरू की है. इसका उद्देश्य कीमतों की बेहतर खोज सुनिश्चित करना और भारतीय बाजारों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है. सेबी ने भारत के मार्केट को वैश्विक मानकों के अनुरूप लाने के लिए एक नया क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी सीएएस भी शुरू किया है. रिपोर्ट में बताया गया है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई की हिस्सेदारी 15 साल के निचले स्तर पर आ गई, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी डीआईए की इक्विटी हिस्सेदारी मार्च 2026 तक रिकॉर्ड 70% तक पहुंच गई. तो उद्यन, यहां पर अगर हम इस पूरी रिपोर्ट को देखें तो दो अच्छी बातें, आईपीओ की संख्या के मामले में टॉप पर हैं और दूसरा जो फंड रेज्ड हैं इसमें भी हम तीसरी पोजीशन पर हैं. इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
0: देखिए, ये जब पीछे मार्केट्स के बारे में विश्लेषण

0: रहा था, तो एक कुछ विश्ले जो एक्सपर्ट्स थे उनका ये मानना था, उनका ये कहना था कि देखिए काफ़ी सारी जो कंपनीज हैं वो जो IPO रेज कर रहे हैं वो बेसिकली फॉरेन, उनमें से काफ़ी कंपनीज ऐसे हैं जो कि फॉरेन कंपनीज हैं, वो IPO रेज करके पैसे भारत से बाहर लेके जा रही हैं।
1: जी
0: तो उसको लेके बहुत हाय तौबा चली कई महीने, और कई लेख लिखे गए, कई बोल बोले गए। बट इंडिया जैसे मार्केट में जहाँ पे IPO में इंटरेस्ट बरकरार है, वहाँ पे और स्टोरीज भी हैं।
1: जी
0: तो कई बार क्या होता है, जब बारिश हो रही होती है तो फिर मूड थोड़ा सा डाउन होता है, तो फिर कुछ बातें भी वैसी मध्यम मध्यम सी होने लगती
1: जी
0: हैं। पर अब हमें ये याद रखना है कि हमारे यहाँ पे और स्टोरीज भी हैं। एक डिफेंस का सेक्टर है जो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: जी
0: फिर आपके स्पेस से जुड़े जो स्टार्टअप्स थे 10 साल पहले,
1: जी
0: वो अब बड़े होते चले जा रहे हैं और इवेंचुअली वो आके मार्केट्स को टैप करेंगे। तो आप देखेंगे कि एक पाइपलाइन बनती चली गई है, और ये आप जब आप बनाते हैं तो IPO में फंड रेज आपका बढ़ता चला जाएगा, नंबर वन। नंबर टू जो है वर्थ पॉइंटिंग आउट कि DII का शेयर 17% है। इसका मतलब भारत की जो इंस्टीट्यूशन की हिस्सेदारी सबसे पहली बार उसका वर्चस्व ज़्यादा हुआ है
1: कायम
0: विदेशियों से।
1: हुआ है
0: जी
1: जी।
0: राइट,
1: मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेड क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ग्रू बाय 14.4% ईयर ऑन ईयर इन June 26 कंपेयर टू 11.1% अ ईयर अर्लियर। अकॉर्डिंग टू द RBI, क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज रोज 17.9%, अप फ्रॉम 5.1% अ ईयर अगो। रिटेल लोन ग्रोथ एक्सेलरेटेड टू 20.3% फ्रॉम 14.3%, ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन हाउसिंग, व्हीकल लोन्स एंड लोन्स अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी। हाउएवर, क्रेडिट ग्रोथ टू द सर्विसेज सेक्टर मॉडरेटेड टू 17.6% फ्रॉम 22.4%, व्हाइल लेंडिंग टू इंडस्ट्री स्लो टू 6.7% फ्रॉम 10.3%।
2: अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 31 जुलाई को समाप्त हुए सप्ताह में $10.5 अरब बढ़कर 692.8 अरब डॉलर हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं, जो इस दौरान 8.7 अरब डॉलर बढ़कर 564.6 अरब डॉलर हो गई। देश के स्वर्ण भंडार में 1.6 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है और ये 104.7 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। विशेष आहरण अधिकार यानी SDR 4.80 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.66 अरब डॉलर हो गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत की आरक्षित स्थिति भी 2.80 करोड़ डॉलर बढ़कर करीब 4.8 अरब डॉलर हो गई है।
1: So all this, Udyan, just a brief comment. Good news, progressive news.
0: We are holding on. Let's not forget that RBI had to intervene in the forex market, but still our forex reserves are holding on.
1: Right.
2: और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आइए अब चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर। एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में सम्मिलित दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.6% गिरा, जबकि जापान का निकेई 225 0.1% घाटे के साथ बंद हुआ।
1: ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस ड्रॉप्ड टुडे एज इन्वेस्टर्स वेट सिग्नल्स दैट गल्फ स्टेट्स एंड ईरान वर क्लोजिंग इन ऑन अ डील टू रीओपन द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अंडर अ टेंपरेरी अरेंजमेंट। ब्रेंट क्रूड वाज ट्रेडिंग 0.8% डाउन एट $81.86 पर बैरल in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.3% lower at $77.08 per barrel when reports last came in. Crude oil prices, you'd earlier said we're looking at again range bound here, Udyan?
0: Yeah, I would say so, unless there is the whole situation flares up again. We in the short term we are looking pretty much at that.
1: Right, okay. And as long as it is in this range, good news for India?
0: No, not really. We would like it lower, but we really don't have so much of a choice. But as long as we can manage and we can meanwhile build reserves and stuff like that, strategic reserves, get on to things like PNG, manage our stuff well, I think we should be okay.
1: Right.
2: और अब नजर डालते हैं सोने और चांदी के बाजार पर। सोना 0.8% की तेजी के साथ 149,621 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जबकि चांदी 2.5% से अधिक के उछाल के साथ 231,381 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। तो उदयन, इस समय आप किस तरीके से देख रहे हैं सोने और चांदी के मार्केट को?
0: देखिए, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को

0: उनकी इंटरेस्ट बनी रहेगी, प्राइसेस आपको मॉडरेट लेवल पे बढ़ती तो रहेंगी। जब तक ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस बने रहेंगे तो गोल्ड में इंटरेस्ट बना रहेगा, और 10% ऑफ ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो है वो थंब रूल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करने का है। और उस ये एक वोल्टेज स्टेबलाइजर का काम करता है, आपका अगर रिटर्न्स में अप डाउन हो रहा है
1: जी
0: तो गोल्ड एक वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह आपके पूरे ओवरऑल रिटर्न को एक स्टेबिलिटी देता है, एक स्थिरता देती है।
1: जी बिल्कुल। तो सबकी नज़रें गोल्ड पर रहती हैं, और आपने जो बताया, और इसी के साथ समय कम है उदयन जी, कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और अब
2: Absolutely,
1: हेडलाइंस।
2: Udayan. Thank you so much for coming on to our program. And a look at the headlines before we close. Benchmark domestic indices fall. Sensex drops over 450 points. Nifty settles below 24,600. Parliament passes MSME Development Amendment Bill 2026 to address payment delays and simplify dispute resolution. And India retains top position in IPO account. Ranks third in fundraising in last fiscal year, highlights SEBI annual report. Adds FPI's ownership falls to a 15-year low, while domestic institutional investors' equity holding reaches record 17%. That's all for today. Namaskar.
1: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत मेरे मन मीत लिए आज एक बार फिर साथ हूं मैं रोहिणी। कहते हैं हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है तो हर रात एक सीख देकर जाती है। शायद जिंदगी की खूबसूरती इसी में है दोस्त, और इस खूबसूरती को ये समा और भी बढ़ा देता है जब ये अपने उस रूप में आता है जो सबके दिल को भाता है। आइए कुछ इसी अंदाज में सुने गीत मेरे मनमीत 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

गीत मेरे मन मीत आप सुन रहे हैं दोस्तों। अगला गीत मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म से आप तक पहुंच रहा है लता जी और किशोर जी की आवाज़ में। इस गीत को अल्फाज से सजाया है आनंद बख्शी जी ने और संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा अंदाज गीत मेरे मन मीत में।

101.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मन में आप सुन रहे हैं। तो सो कहते हैं हमारे आसपास जब कुछ ऐसे रिश्ते या कुछ ऐसे शख्स होते हैं जिन्हें हम सुनकर बड़ा सुकून महसूस करते हैं, वो कहते हैं ना जब किसी मित्र की मौजूदगी प्रार्थना जैसी शांति देने लगे तो समझ लीजिए ईश्वर ने आपको एक अनमोल रिश्ता सौंपा है और उस रिश्ते को हमेशा खास बनाकर रखिए। आइए सुनते हैं अगला गीत फर्ज फिल्म से रफी साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाज में। इस गीत को अल्फाज से सजाया अन बख्शी जी ने और संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। 101 मेगाहर्ट्ज़।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: दशमलविक मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गीत मेरे मन मीत। जिंदगी बड़े प्यारे अल्फाज कहती है और बहुत कुछ सिखाती है। कहते हैं जिंदगी तुम्हारे तैयार होने का इंतजार नहीं करती, इसलिए जैसे वो जैसे हो वैसे ही जहां हो वहीं से चलना शुरू करो। जब तुम चलोगे रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे और आप आगे मंजिल से अपनी जुड़ते चले जाएंगे। जी हाँ श्रोताओं, आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल के साथ आप भी हमेशा यूं ही जुड़े रहिए, चलते रहिए और हमारे जी हाँ बेहद प्यारे प्यारे कार्यक्रमों को यूं ही सुनते रहिए और जुड़े रहिए उनसे। फिलहाल आज गीत मेरे मनमीत को यहीं समेटने की दीजिए इजाजत और आपसे मैं लूंगी इजाजत। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह अगला गीत अजनबी फिल्म से आप तक पहुंचाती हूं। किशोर जी और लता जी की आवाज में ये गीत है। इस गीत को संगीतबद्ध किया है आटी बर्मन जी ने और अल्फाज दिए हैं आनंद बख्शी जी ने। तो आइए सुनते हैं ये अगला गीत और फिलहाल मैं लूंगी अब आपसे इजाजत। शुक्रिया।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 2 दिवसीय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के पहले दिन श्री राधाकृष्णन श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक का दौरा करेंगे। वे शहीद स्तंभ पर स्वतंत्रता ज्योति पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, वीर सावर की कोठरी का दर्शन करेंगे। दौरे के दूसरे दिन उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने कल इस विधेयक को पारित किया। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है।
1: जहां तक भारत के अपने विधायी

0: मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
1: श्री जायसवाल ने कहा है कि भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा है कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ अंजू, कार्यक्रम लेकर आई हूं निशिकंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

ये दिल भी न जाने क्या कर बैठा, मुझसे बिना पूछे तुमसे वफा कर बैठा। अब तो धड़कन भी सिर्फ तुमको मांगती है, जैसे ये दिल खुद ही खुदा से ये दुआ कर बैठा।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

जो दोस्त हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है निशिगंधा और आप हैं अंजू के साथ।

इस सावन में हवाएं कुछ ऐसा जादू कर गई, न जाने क्यों ये धड़कनें हद से गुजर गई। बरस रही है बूंदे और महक रहा है चमन, तुम्हारी याद में आज फिर बहक रहा है ये मन।

ना कोई बात हुई ना कोई इकरार हुआ, पर ना जाने कैसा ये जादू का वार हुआ। देखा तुम्हें तो बस देखते ही रह गए हम, पहली ही नजर में जो तुमसे बेपनाह प्यार हुआ।

इन आंखों ने जब से तुम्हें देखा है, जुबान से कुछ कहने की जरूरत ही ना रही। सब कुछ बयां जो कर देती हैं ये झुकी हुई पलकें, इसलिए दिल में अब कोई हसरत ही नहीं रही।

दोस्तों अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और 1:10 पर आपसे फिर से मुलाकात होगी कार्यक्रम गीत सुहाने लेकर, सुनते रहिए 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम गोल्ड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज दो दिन के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर जाएंगे। अपने दौरे के पहले दिन श्री राधाकृष्णन श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक का दौरा करेंगे। वे शहीद स्तंभ पर स्वतंत्रता ज्योति पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, वीर सावरकर की कोठरी का दर्शन करेंगे। दौरे के दूसरे दिन उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम के फ्लैग प्वाइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने कल इस विधेयक को पारित किया। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है।
1: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड NUCFDC के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत

करेंगे। कार्यक्रम के दौरान NUCFDC और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान यूनिवर्सिटी के बीच एक समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया जाएगा। भारत और रूस के बीच आधुनिकीकरण और औद्योगिक सहयोग पर कार्य समूह की 12वीं बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता भारत की ओर से उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया और रूस की ओर से उद्योग एवं व्यापार उपमंत्री अलेक्सी गुरुजदेव ने की। बैठक में दोनों देशों ने उद्योग, विज्ञान एवं तकनीक, अंतरिक्ष, रेलवे, खनिज खनन, उर्वरक और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने ड्रोन, 3D प्रिंटिंग, रूस के SJ-100 विमान के निर्माण और विमान इंजन तकनीक में सहयोग की संभावनाओं पर भी बातचीत की। बैठक में लिथियम, दुर्लभ खनिज, एल्यूमिनियम, खनन उपकरण और उर्वरक आपूर्ति जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि

समय हुआ है 1:11 और 4 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम गीत सुहाने का। एक बार फिर मैं अंजु आपका करती हूँ बहुत बहुत स्वागत, और इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे बहुत ही मधुर गीत। तो चलिए शुरुआत कर रही हूँ फिल्म अनजाना से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गाए हुए इस गीत के साथ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

कोई पूछे जो मुझसे मेरी जिंदगी की चाहत, मैं मेरा सोचे बस तेरा ही नाम ले लूं। हम तो सिर्फ तेरे हैं और तेरे ही रहेंगे, चाहे जमाना मुझे अब कोई इल्जाम और दे दे।

हमें देखकर जो औरों से मुस्कुराने लगते हो, हर साफ पता चलता है कि तुम हमें ही जलाना चाहते हो। नफरत ही सही, पर कुछ तो गहरा रिश्ता है ना हमसे। यूं ही नहीं तुम गैरों को देखकर हमें आजमाना चाहते।

मेरी जागी हुई रातों का हिसाब तुम्हारी समझ से बाहर है। इश्क तो मैंने किया है, तुमने तो बस लहजे बदले हैं। तरस जाओगे तुम भी एक दिन हमारी इस दीवानगी को। हमने तुम्हारे लिए अपने जिंदगी के तौर तरीके बदले हैं।

पास जो आ गए हम तुम्हारे, तो कायनात थम सी गई। पास जो आ गए हम तुम्हारे, तो कायनात थम सी गई। नजरों ने नजरों से वो कह दिया जो जुबां कभी कह ना सकी।

उसी कार्यक्रम का आखिरी गीत है। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार 2:10 पर। फिर से आपसे मुलाकात होगी। कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज दो दिन के अंडमान और निकोबार दौरे पर जाएंगे। अपने दौरे के पहले दिन श्री राधाकृष्णन श्री विजयपुरम स्थित सेल्यूलर जेल राष्ट्रीय स्मारक का दौरा करेंगे। वे शहीद स्तंभ पर स्वतंत्रता ज्योति पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, वीर सावरकर की कोठरी का दर्शन करेंगे। दौरे के दूसरे दिन उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने कल इस विधेयक को पारित किया। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है।
1: जहां तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमरीका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारतीय जहाजों नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड NUCFDC के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान NUCFDC और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान यूनिवर्सिटी के बीच एक समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया जाएगा। राजस्थान की जोजरी, बांडी और लूणी नदियों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को एक हफ्ते के भीतर एकीकृत समन्वय समूह बनाने का निर्देश दिया है। इस समूह की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रदूषण से नदी, पर्यावरण और वन्य जीवों को नुकसान हो रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुख्य सचिव समय समय पर नदी सफाई और सुधार कार्यों की समीक्षा करेंगे और सभी विभाग मिलकर

0: काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को ऐसा शिकायत तंत्र बनाने का निर्देश दिया जिससे लोग नदी प्रदूषण या पर्यावरण से जुड़े मामलों की आसानी से शिकायत कर सकें और उन पर जल्दी कार्रवाई हो सके। अरुणाचल प्रदेश के ताकम ज्योति ने जॉर्जिया में आयोजित बटुमी ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट में रजत पदक जीता, वहीं आदि नातुंग ने कांस्य पदक हासिल किया। ये प्रतियोगिता 30 जुलाई से 3 अगस्त तक जॉर्जिया के बटुमी में आयोजित की गई थी। उप मुख्यमंत्री चोवना मीन ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur.

एक बार फिर सभी का स्वागत है। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंजू है आपके साथ और कार्यक्रम लेकर आई हूँ रात सुरमई। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और शुरुआत बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। आप रहिए इस घंटे और इस घंटे होंगे बहुत सारे मधुर गीत।

अब तुम पर आकर खत्म हो गई सारी मेरी तलाश, अब तुम पर आकर खत्म हो गई सारी मेरी तलाश, कि तेरे सिवा अब मुझे इस दिल में किसी की कोई हसरत नहीं।

खाओ कसम कि जब भी आंखें बंद हों तो अक्स सामने तुम्हारा ही हो। खाओ कसम कि जब भी आंखें बंद हों तो सामने अक्स तुम्हारा ही हो कि जिंदगी के आखिरी

तुम शामिल हो मेरे हर पल में, मेरी हर एक दुआ की तरह। तुम शामिल हो मेरे हर पल में, मेरी हर एक दुआ की तरह। सांस लेती हूँ तो महसूस होते हो मुझे एक खुशबू की तरह।

चलिए आप भी हमसे वादा करिए कि आप भी हमारे साथ रहेंगे। और अब स्टूडियो में आ चुकी हैं अर्चना गोयल, जो आपके साथ रहेंगी 3:10 से हम राही लेकर। और अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। मैं आपसे मिलूंगी जल्द ही किसी न किसी मोड़ पर। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने कल इस विधेयक को पारित किया। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है।
1: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड NUCFDC के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान NUCFDC और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान यूनिवर्सिटी के बीच एक समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया जाएगा। पश्चिम बंगाल राज्य विज्ञान कांग्रेस 2026 का आयोजन 16 और 17 सितंबर को न्यू टाउन स्थित बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. कल्याण चक्रवर्ती ने बताया कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका उद्घाटन करेंगे। डॉ. चक्रवर्ती ने कहा कि सरकार का उद्देश्य बंगाली भाषा में विज्ञान को बढ़ावा देना है। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य से बाहर गए प्रतिभाशाली छात्रों को वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में योगदान दे सकें। भारत और श्रीलंका ने वित्तीय क्षेत्र में सहयोग पर कल नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने किया, जबकि श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ऊर्जा मंत्री अनुराग करुणथिलाके ने किया। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि UPI के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए आगे भी मुफ्त बने रहेंगे। छोटे व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। मौसम विभाग ने आज ओडिशा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरलम, माही और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी बारिश, गरज और बिजली कड़कने की आशंका व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश में ताकम ज्योति ने जॉर्जिया में आयोजित बटुमी ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट में रजत पदक जीता। वहीं आदि नातुंग ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बरसती हुई बारिश कभी सिर्फ पानी नहीं होती, उसमें भीगी होती है कुछ अधूरी बातें, कुछ अनकहे वादे और किसी की यादें। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमराही कार्यक्रम को लेकर हाजिर है आपकी रात की हमसफर अर्चना गोयल। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना है और इस मौसम में धरती महकती है, पेड़ झूमने लगते हैं और हवाएं गुनगुनाती हैं। लेकिन यही सावन उन लोगों के दिल में हल्की सी कसक भी जगा देता है जिनका कोई अपना उनसे दूर है। बारिश की हर बूंद जैसे पूछती है कि आज भी तुम्हें उनकी याद आती है। आइए इसी भीगे हुए एहसास के साथ सफर शुरू करते हैं।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में ये गीत था फिल्म सांझ और सवेरा से। कहते हैं पहली बारिश और पहला प्यार कभी नहीं भूलते। जिस तरह मिट्टी पहली बारिश में अपनी खुशबू बिखेरती है, उसी तरह दिल भी पहली मोहब्बत की यादों में महक उठता है और याद आती है वो बारिश की बूंदों के साथ बरसते प्यार की।

कभी कभी किसी के साथ दूर तक चलते जाना और या किसी के साथ छतरी साझा करना, कभी बारिश में भीगते हुए लंबी बातें करना, ये छोटी छोटी सी बातें उम्र भर साथ चलती हैं। भीगी हुई फिजाओं ने फिर नाम तेरा लिया, सावन ने हर बूंद में पैगाम तेरा दिया।

0: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही और मैं हूं आज आपके साथ अर्चना गोयल।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी लोगों को अलग राहों पर ले जाती है, फासले बढ़ जाते हैं, लेकिन मोहब्बत नहीं। बरसात की रातों में अक्सर खिड़की पर गिरती हुई बूंदें ऐसा एहसास कराती हैं जैसे कोई दूर बैठा इंसान चुपचाप हमें याद कर रहा हो, शायद वो भी इस बारिश को देख रहा हो और हमारी तरह मुस्कुरा भी रहा हो या थोड़ा उदास भी हो।

आया सावन झूमके। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना, आवाजें थीं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की। कुछ मौसम सिर्फ बाहर नहीं आते, दिल के भीतर भी उभरते हैं। सावन ऐसा ही मौसम है, बारिश की खुशबू, खिड़की पर बूंदों के निशान और ठंडी हवा, सब मिलकर किसी की मुस्कान, किसी की आवाज़ और किसी के साथ बिताए हुए पल लौटा लाते हैं। तब एहसास होता है कि यादें कभी पुरानी नहीं होती।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत था फिल्म धरती से। दोस्तों, मोहब्बत सिर्फ मिलने का नाम नहीं, कभी कभी बरसों तक किसी का इंतजार करना भी प्रेम होता है। जैसे धरती हर साल सावन का इंतजार करती है, वैसे ही कुछ दिल किसी एक इंसान का, शायद इस साल, शायद अगली बारिश में, शायद किसी मोड़ पर वो फिर मिल जाएं।

दोस्तों, सावन हर साल आता है, लेकिन हर किसी के लिए उसका अर्थ अलग होता है। किसी के लिए खुशियों की बारिश, किसी के लिए यादों की बारिश और किसी के लिए उम्मीदों की बारिश। अगर आपका कोई अपना आज आपसे दूर है तो उसे एक संदेश ज़रूर भेजिए, क्योंकि कभी कभी सिर्फ इतना सा कहना, बारिश हो रही है, तुम्हारी याद आ रही है, किसी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान ला सकता है।

बरसात की हर बूंद यही दुआ दे जाए, जो दिल से दूर है वो फिर से पास आ जाए। इसी उम्मीद के साथ कि हर दूरी एक दिन मिट जाएगी और हर इंतज़ार का अंत होगा, मैं अर्चना गोयल आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज 2 दिन के दौरे पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जाएंगे। दौरे के पहले दिन श्री राधाकृष्णन श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक का दौरा करेंगे। वे शहीद स्तंभ पर स्वतंत्रता ज्योति पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, वीर सावरकर की कोठरी का दर्शन करेंगे। दौरे के दूसरे दिन उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने कल इस विधेयक को पारित किया। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है।
1: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड NUCFDC के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान NUCFDC और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान यूनिवर्सिटी के बीच एक समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया जाएगा। मिजोरम में छात्र संगठन मिजो जिरलाई पॉल MZP ने मिजोरम लोक सेवा आयोग के खिलाफ अपना आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। संगठन ने कहा है कि वह सोमवार को मिजोरम लोक सेवा आयोग के कार्यालय के बाहर धरना देगा। उसकी मांग है कि आयोग में जरूरी सुधार किए जाएं और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि भर्ती प्रक्रिया ज्यादा बेहतर और पारदर्शी बन सके। असम में बाढ़ का संकट अब भी गंभीर बना हुआ है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 98 हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या घटकर अब 13 रह गई है। राज्य में अभी भी 1,55,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने आज ओडिशा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरलम, माहे और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी बारिश, गरज और बिजली कड़कने की आशंका व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश के ताकम ज्योति ने जॉर्जिया में आयोजित बटुमी ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट में रजत पदक जीता, वहीं आदि नातुंग ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. The Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 has been passed by the Parliament, with the Lok Sabha approving it yesterday. The Rajya Sabha had passed the bill on Monday. The bill aims to address payment delays and simplify dispute resolution. The legislation provides that every central public sector enterprise must settle all invoices for procurement of goods or services from MSMEs on the trade receivables discounting system. As per the bill, if mediation fails in case of dispute, then the

आइएस नई सुबह का स्वागत ईश्वर के स्मरण से करें, क्योंकि जब मन प्रभु के चरणों में झुकता है तभी जीवन की चिंताएं हल्की होने लगती हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम अरुणिमा। सुबह के 4:11 हो चुके हैं और कार्यक्रम को लेकर आपके साथ है आपकी दोस्त अर्चना गोयल। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की ये सुबह केवल एक नया दिन है बल्कि एक नया अवसर लेकर आई है। रात का अंधियारा अब पीछे छूट चुका है और पूर्व दिशा में उगता सूरज हमें ये संदेश देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह अवश्य आती है।

ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको केवल सुखी नहीं बल्कि हर परिस्थिति का सामना करने का साहस भी दे, क्योंकि मजबूत इंसान वही होता है जो कठिन समय में भी विश्वास नहीं खोता। याद रखिए, भगवान हमारे रास्ते आसान नहीं करते, वे हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं।

दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का समय मन और आत्मा को निर्मल बनाने का समय माना जाता है। इस समय किया गया ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक चिंतन पूरे दिन को ऊर्जा से भर देता है और यही ऊर्जा हमारे अंदर एक नवीन विचार को जन्म देती है।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा और मैं हूं आज आपके साथ अर्चना गोयल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 4:33 और 23 सेकंड।

दोस्तों, कभी कभी हम जीवन में छोटी छोटी बातों से निराश हो जाते हैं, लेकिन प्रकृति हमें हर दिन सिखाती है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। पेड़ अपने पुराने पत्ते छोड़ते हैं, तभी नई हरियाली आती है। इसलिए बीती हुई बातों को छोड़ दीजिए और आज का स्वागत मुस्कान के साथ कीजिए।

एक सुंदर विचार, अगर प्रार्थना शब्दों से नहीं निकलती तो भी भगवान दिल की आवाज़ सुन लेते हैं। दोस्तों, सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही सोच से भी मिलती है। पॉजिटिव सोच या विचार वो दीपक हैं जो अंधेरे रास्ते को भी रोशन कर देते हैं।

आइए अब आपको एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, भगवान कहाँ मिलते हैं? तो गुरु मुस्कुराए और बोले, जहाँ अंधकार समाप्त होता है वहीं भगवान का निवास शुरू होता है। इसलिए विनम्रता को अपना आभूषण बनाइए, दूसरों की सहायता कीजिए, मधुर बोल बोलिए और हर मिलने वाले को सम्मान दीजिए। यही सच्ची भक्ति है।

दोस्तों, अब वक्त है कुछ पल अपने लिए निकालने का। कुछ क्षण अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। गहरी सांस लीजिए और मन ही मन प्रभु का नाम लीजिए। ओम को महसूस कीजिए कि आपके भीतर नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। सारी चिंता, तनाव और भय धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। आपके भीतर आत्मविश्वास जाग रहा है। ईश्वर ने आपको एक और दिन दिया है। इसका अर्थ है कि अभी भी आपके जीवन का उद्देश्य पूरा होना बाकी है।

सूर्योदय हमें हर दिन ये सिखाता है कि किसी भी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाइए, एक दिन यही कदम आपकी मंजिल बन जाएंगे।

और अंत में ईश्वर से इतना मत मांगिए कि इच्छाएं कभी समाप्त ना हो, बस इतनी कृपा मांगिए कि हर परिस्थिति में आपका विश्वास कभी कम ना हो। इसी प्रार्थना के साथ आपका आज का दिन मंगलमय, सफल और आनंदमय हो। मैं अर्चना गोयल आपसे अनुमति चाहूंगी। 5:10 पर कार्यक्रम भोर सुहानी में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए आगे भी मुफ्त बने रहेंगे। छोटे व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने कहा कि यूपीआई देश की महत्वपूर्ण डिजिटल व्यवस्था बन चुका है, जिसका इस्तेमाल करोड़ों लोग रोजाना करते हैं। बढ़ते लेनदेन को देखते हुए सुरक्षा, तकनीक और ढांचे को मजबूत बनाए रखना जरूरी है, ताकि भविष्य में भी यूपीआई उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए सुचारू रूप से काम करता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 2 दिन के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले दिन उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक का दौरा करेंगे।

0: वे शहीद स्तंभ पर, स्वतंत्रता ज्योति पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। वीर सावरकर की कोठरी का दर्शन करेंगे। दौरे के दूसरे दिन उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड NUCFDC के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान NUCFDC और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान यूनिवर्सिटी के बीच एक समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया जाएगा। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमेरिका के सांसदों की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस निर्णय पर संसद निर्णय लेती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर आंदोलन जारी है। इस बीच राज्य सरकार और 10 छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के बीच कल देर शाम औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे चली बैठक में छात्र प्रतिनिधियों ने पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की मांग दोहराई और कहा कि जब तक लिखित में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। उधर मिजोरम में छात्र संगठन मिजो जिरलाई पॉल MZP ने मिजोरम लोक सेवा आयोग के खिलाफ अपना आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। संगठन ने कहा कि वो सोमवार को मिजोरम लोक सेवा आयोग के कार्यालय के बाहर धरना देगा। उसकी मांग है कि आयोग में जरूरी सुधार किए जाएं और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि भर्ती प्रक्रिया ज्यादा बेहतर और पारदर्शी बन सके। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद ने अमेरिका के सेंट लुई में आयोजित रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। 20 वर्षीय प्रज्ञानंद ने 23.5 अंक हासिल कर ये जीत एक राउंड पहले ही पक्की कर ली। उज्बेकिस्तान के जोवकिर सिंदराव दूसरे और अमेरिका के वेस्ली सो तीसरे स्थान पर रहे। और कोरिया मास्टर सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में दोनों भारतीय खिलाड़ी आमने सामने होंगी। अश्मिता ने क्वार्टर फाइनल में जापान की नंबर एक खिलाड़ी हिना अकेची को 3 गेम के रोमांचक मुकाबले में हराया। वहीं रक्षिता रामराज ने हमवतन और तीसरी वरीयता प्राप्त तन्वी शर्मा को हराकर अंतिम 4 में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. The Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 has been passed by the Parliament, with the Lok Sabha approving it yesterday. The Rajya Sabha had passed the bill on Monday. The bill aims to address payment delays and simplify dispute resolution. The legislation provides that every central public sector enterprise must settle all invoices for procurement of goods or services from MSMEs on the trade receivables discounting system. As per the bill, if mediation fails in case of dispute, then the reference for arbitration must be made within 30 days from the date of termination of mediation. Both the Houses of Parliament once again faced disruptions following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. Due to the continued disruptions by the opposition members, both the Houses were adjourned for the day before lunch. Following opposition uproar, question hour could not be taken up in both the Houses. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's relations with Pakistan can only move ahead in an environment free of terror, hostility and violence. In a written reply in Lok Sabha today, Dr. Jaishankar said that Pakistan continues to follow the policy of

नमस्कार दोस्तों, नई सुबह की सुनहरी किरणों के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। एफएम गोल्ड आकाशवाणी दिल्ली का चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम भोर सुहानी में मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी दोस्त अर्चना गोयल, और अगले कुछ पलों तक हम साथ मिलकर इस सुबह को और खूबसूरत, सकारात्मक और ऊर्जावान बनाएंगे। कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

कहते हैं कि सूरज हर दिन सिर्फ रोशनी ही नहीं लाता, बल्कि उम्मीदों का एक नया अध्याय भी खोलता है। बीती रात की थकान, अधूरे सपने और छोटी बड़ी परेशानियां सब इस नई सुबह की ओस की बूंदों में जैसे धीरे धीरे घुल जाती है और दे जाती है मन को सुकून।

दोस्तों, कभी आसमान को ध्यान से देखना। नीला आसमान क्या कुछ कहता है। हवा में ताजगी, पेड़ों की डालियों पर बैठी चिड़िया अपने मधुर गीतों से दिन का स्वागत कर रही है। फूलों पर ठहरी ओस की बूंदें मानो कह रही हैं कि जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती हर दिन नए सिरे से मुस्कुराने में है।

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी, और भोर सुहानी के साथ जुड़ी हूं मैं, आपकी दोस्त अर्चना।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
0: दोस्तों, सुबह का समय केवल घड़ी का एक हिस्सा नहीं होता, बल्कि ये हमारे विचारों का आरंभ भी होता है। यदि दिन की शुरुआत विश्वास, कृतज्ञता और मुस्कान के साथ हो, तो पूरा दिन मन प्रफुल्लित रहता है और मन करता है कि ये सारा आसमां मेरा है।

एक सुंदर विचार। जब भी कभी मन थोड़ा डगमगाए तो बस इतना याद रखना, ईश्वर ने आपको एक और सुबह दी है। इसका अर्थ है कि अभी भी बहुत कुछ अच्छा होना बाकी है।

आइए इस नई सुबह के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें, प्रार्थना करें कि हमारे मन में प्रेम हो, वाणी में मधुरता हो और अपने कर्म में ईमानदारी हो और जीवन में सदा सच्चाई और सकारात्मक बनी रहे। इसी सुंदर भावनाओं के साथ अब समय है कार्यक्रम के अगले गीत का, जो इस सुहानी सुबह को ताजगी दे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दे।